सचखंड वासी श्रीमान संत बाबा जोगिंदर सिंह जी मोनी साहब सबका जथेदार तख्त सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहब।

आवाज सूक्ष्म हो जाती है, बरीक प्यार आवाज विच प्यार भर जाता है, रस भर जाता है। महापुरशां दी बंदगी उन्हां दे बोलां तों झलकदी है। धन बाबा जी सिंह साहब, बाबा जोगिंदर सिंह जी मोनी जी, जिन्हां ने लगभग 34 साल तां अंदर सचखंड साहब जी की सेवा की है। उस तों पहलां रहरासीए सिंह साहब बन के रहरास की सेवा बड़ा लंबा समा की है। 80-90 साल की उम्र तक इस पवित्र तखत सचखंड श्री हजूर साहब जी की सेवा करने वाले और विश्व भर तो, क्योंकि वह समा बड़ा बिखड़ा सी खालसा जी, हुण ते हजूर साहब आना कोई औखा ही नहीं। किन्नियां ही ट्रेना पंजाब तो, हिंदुस्तान के वख वख कोनियां तो, बंबे तो सीधियां आ जांदियां। उस समय साध संगत जी बड़ियां ट्रेना बदल के आना पैंदा सी, छोटियां रेलां सन, संगतां बहुत घट आउंदियां सन। सिंह साहब बाबा जोगिंदर सिंह जी इन्ना प्यार देंदे सन आई हुई संगत नूं, जिवें सिंह साहब बाबा कुलवंत सिंह जी अज प्रेम वरता रहे ने। हजारां संगतां जोड़ दित्तियां, लखां संगतां जोड़ दित्तियां, ते गुरु तखत साहब की मर्यादा पूरी तरह निभाई, भावना भगती श्रद्धा नाल। साध संगत जी जे मन च प्रेम ना होवे, भावना ना होवे, श्रद्धा ना होवे, ते गुरु घर की सेवा एक दिन भी नहीं हो सकती। जेड़े कहिंदे आ ना भी सिर्फ किताबां पढ़ के ही ज्ञान आ जांदा है, खालसा जी वो किताबां पढ़न वाले चुंच ज्ञानी, इहदा मतलब ये नहीं भी पढ़ना नहीं चाहिदा। बाणी पढ़नी चाहिदी है, विद्या पढ़नी चाहिदी है, पर विद्या पढ़ के मन नीवां ते मत उच्ची होनी चाहिदी है। उन्हां महापुरशां दा मन नीवां ते मत उच्ची सी। गुरबाणी दे रसीए हजूरी मरिया सचखंड श्री हजूर साहब, इहदे उत्ते जिहड़े नवें लोग ने जिन्हां ने अंग्रेजां तों सिख्या लई है, ਉਹ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਜਵਾਬ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਭਾਈ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1400 ਰਹਿਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, 1400 ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ, ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਲਿਖੀ ਭਾਈ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ ਨੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿਖੋਗੇ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ।

जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन जन

जय गुरु गुरु निवास अंतर जामे सच्चे पातशाह जी महाराज धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आप जी दे पावन पवित्र स्थान तक सचखंड दरबार दियां हजरिया बरदे होए कीर्तन दे सत्काज संगता लो बेंत माया हाजिर होए जिस खजाने विच माया हाजिर कीती सो सुख जाने भरपूर करना नाम दान गुरसिखी वाला जन बसना दे अरक्ता बख्शनिया साम सा

जलस्तुहि थलस्तुहि नदीस्तुहि नदस्तुहि वृक्षस्तुहि पतस्तुहि चितस्तुहि ऊर्ध्वस्तुहि भजस्तु अंग भजस्तु

करीम सोए रास करहीम होई दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मानवो एक ही किसे सब ही को गुरुदेव एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जानवो देहु राम सीत सोई पूजा निवाज होई मान सब एक पयाने को भ्रमाव है देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदु न्यारे न्यारे देशन के भेद को प्रभाव है एक नैन एक कान एक देह एक बान खाक बाद आतस ओ आव कोर लाव है अल्लाह अभेक से पुराण ओ पुराण हुई एक ही स्वरूप सब एक ही बनाव है जैसे एक आग ते कनु का कुट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाहेंगे जैसे एक दूर ते अनेक दूर बूरत है दूर के कनु का फिर दूर ही समाहेंगे जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहाहेंगे जैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे केते कछ मछ केते उनको करत वच केते अच वच होए सपच उड़ जाहेंगे केते नब बीच अच पच को करेंगे वच केतक प्रतच होए पचाए खाए जाहेंगे जल कहाँ थल कहाँ गगन के गौन कहाँ काल के बनाए सब काल ही जबाहेंगे तेज जीव तेज में अतेज जैसे तेज रेन ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे कुकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है कित गंगवासी कित मदीना मक्का निवासी के तक उदासी के ब्रह्माई फिरत है करवत सहत केत भू में गड़त केत सुअप चढ़त केत दुख को भरत है ज्ञान में उड़त केत जल में रहत केत ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है सोध हार देवता विरोध हार दानव बड़े बोध हार बोधक प्रबोध हार जापसी घास हार चंदन लगाए हार चुआचार बूझ हार पाहन चढ़ाए हार लापसी गाह हार गोरन मनाए हर मड़ी मट लीप हार वितन लगाए हर छापसी गाय हर गंधर्व बजाए हर किन्नर सब पच हर पंडित तप

ननेहं नगे हम सने हम सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे ब्रमाथे न जाते न पाते न सत्रे न मित्र सभूते भविखे भवाने अचित्रे नारायण नरंगं न रूपं न रेखं न लोभं न चोभंग भूतंग वेखं न सत्रं न मित्रं न नेहं न गेहं सदेवं सदा सर्व सर्वत्र सनेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं जोनि अच्छयाद अद्वय जोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न सोगं वैनिर्विखादं अछेदं अभेदं कर्मं कालं खंडं भंडं प्रचंडं बालं न तातं न मातं न जातं न कायं न नेहं न गेहं न भर्मं न भायं न रूपं न भूपं न कायं न कर्मं न त्रासं न प्रासं न भेदं न भर्मं सदेवं सदा सिद्ध।

कहूँ देह दुखं कहूँ औखधि रोग के शोक सुखं कहूँ देव विद्या कहूँ दैत बानी कहूँ जच गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ राजसी साधकी तामसी हो कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जुगतं कहूँ भूम के भुगत मैं भरम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दान भी हो कहूँ जच विद्या धरे मान भी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ श्रेष्ठ के पृष्ठ के रिष्ट पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम वाणी कहूँ गोग की काव्य कथा कहानी कहूँ अद्र सारंग कहूँ भद्र रूपं कहूँ मद्र वाणी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव्य रूपं कहूँ चेष्टा चार चित्रं स्वरूपं कहूँ परम पुराण गोपार पावे कहूँ बैठ कुरान के गीत गावे कहूँ शुद्ध शेखं कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग गृहं कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं कहूँ राज साजं कहूँ राज रीतं कहूँ पूरण प्रज्ञा कहूँ परम प्रीतं कहूँ आरबी तोर की पारसी हो कहूँ पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूँ देश भाख्या कहूँ देव बानी कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारं कहूँ जंत्र रीतं कहूँ शस्त्र धारं कहूँ होम पूजा कहूँ देव अर्चा कहूँ पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूँ बीन विद्या कहूँ गान कीर्तन कहूँ मलेज भाख्या कहूँ वेद रीतं कहूँ नृत्य विद्या कहूँ नागबानी कहूँ गारडू कूड़ कथा कहानी कहूँ अक्षरा बक्षरा मच्छरा हो कहूँ वीर विद्या भूतं प्रभा हो कहूँ छल छल धरे छत्रधारी कहूँ राज साजं धीराजाधिकारी नमो नाथ पूरे सदा सिद्ध दाता छेदी छयाद अद्वै विधाता न त्रस्तं

जय अंश जगात करता सदैव हर आसनात आसन अडोल अनुभूत करम दाता दयाल अनुभूत धर्म। जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं व्योत बान जय जात पात नहीं शत्रु मित्र जय नेह गेह नहीं चेहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेख जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम थाम नहीं बर्ग ब्याद जय रोग शोक नहीं सत्र साध जय त्रास वास नहीं देह नास जय आद अंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आस नहीं भूम भुगत जय काल ब्याल कट्यो न अंग अच्छा स्वरूप अखय अभंग जय नेत नेत उचरंत वेद जय अलख।

जलंत कई सिमृत सासर दुचरंत वेद कई कोक काव कथत कतेव कई अग्नहोत्र कई पवन हार कई कर्त कोट वृत को आहार कई कर्त साग पै पत्र भच्छ नई तदप देव होवत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व बरीद कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जग याद करम कहूँ अग्नहोत्र कहूँ तीरथ धर्म कई देश देश भाकार डंत कई देश देश विद्या पढ़ंत कई गलत भांत भांतन विचार नहीं एकतास पायत न पार कई तीरथ तीरथ

तब ताप करे नहीं नैक कृपा नित पान परे। जय फोकट धर्म सफे तज है एक चित्त कृपा निध को जप है ते या भव सागर को तर है भव भूल न देह पुनर्धर है। एक नाम बिना नहीं कोट प्रति इम वेद उचारत सार सुति जो वारस के जस के रस है ते भूल न काल फंदा फस है। त्वा प्रसाद नराज छंद अगंज आद देव है अभंज भंज जानिया भूत भूत है सदा गंज गंज मानिया। अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्धता सदीव सर्वसात है। अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्धता। अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानिए सदीव सिद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानिए। नराग रंग रूप है न रोग राग रेग है अधोग ताग दग है अभूत ब्रह्म भेक है। न दात मात जात है न पाद चिहन वर्ण है अधेग सेग भेक है सदीव विश्ववरण है। विश्वंबर विश्वनाथ है विशेक विश्ववरण है जिमी जमान के विघे सदीव करम भरम है। अद्वैख है अभेक है अलेख नाथ जानिए सदीव सर्व ठौर में।

रंग है, न मान है, न मौत है, न साक है, न संग है, न जच है, न गंधर्व है, न नर है, न नार है, न चोर है, न साव है, न साह को कुमार है, न नेह है, न गे है, न देह को बनाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छल को मिलाओ है, न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को स्वरूप है, न राग है, न रंग है, न रेख है, न रूप है, न जंत्र है, न मंत्र है, न तंत्र को बनाओ है, न छल है, न छिद्र है, न छाया को मिलाओ है, न राग है, न रंग है, न रूप है, न रेग है, न कर्म है, न धर्म है, अजन्म है, अभेक है, न तात है, न मात है, अख्याल खंड रूप है, अछेद है, अभेद है, न रंग है, न भूप है, परे है, पवित्र है, पुनीत है, पुराण है, गंज है, अभंज है, करीम है, कुरान है, अकाल है, अपाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न शोक है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न सात है, प्रिया है, पवित्र है, पुनीत है, प्रमात है, न सीत है, न सोच है, न ग्राम है, न घाम है, न लोभ है, न मोह है, न क्रोध है, न काम है, न देव है, न दैत है, न नर को स्वरूप है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र की विभूत है।

भूत है अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत भेक है बलिया रूप राग रंग है न द्वैख है न भेक है न काम क्रोध कर्म है जात है न पात है न चित्र चिहन वर्ण है बेअंत है अनंत तेज जानिए भूम बिज है सदा छिज।

न जंत्र है, न तंत्र है, न मंत्र को रलाव है, न छल है, न छिद्र है, न छिद्र को स्वरूप है, अभंग है, अनंग है, अगंज से विभूत है, न का

जाधपि नराधपि करंत सेव है सदा सिद्धस्पति तपस्पति वनस्पति जपस्ता अगस्त आद जे बड़े तपस्त भी विशेखी है बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ भीखी है अगाध आद देव की अनाथ बाद मानिए न जात बाद मंत्र मित्र सत्र

सेज नाम सहांस वर्ण है नेत पूर्ण होत। सोत सोत हटे सभा सुर विरोध दानव सरब, गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गरब। पड़त पड़त थके महागप गड़द गाड़ अनंत, हार हार कहे उस भूमिल नाम नाम दुरंत। भेद भेद ना पाय।

देवा देव गंधर्व किन्नर माचक अक्षय अपार भूमा काज लेथले मेहमानिये जय नाम दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ

सतद्वापरत त्यागल जोग चत्र काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामृगाय गंधर्व पार हार हार थके सबै नहीं पाइये तह पार नारद आदिक वेद व्यासक मोन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सबै कर कोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच पछर पार सोत सोत थके महासुर पायो नह पार।

कवन सृष्ट को भ्रष्ट है, कहो सकल विस्तार दोहरा। कहाँ कर्म को कर्म है, कहाँ भ्रम को नाश। कहाँ चेतन की चेष्टा, कहाँ चित प्रकाश दोहरा। कहाँ नेम संयम, कहाँ कहाँ ज्ञान ज्ञान। को रोके सो के कवन।

दुर्जन दल दंडन असुर बिहंडन दोष निकंदन आद प्रत्यय चरासुर मारण पति दोधारण नरक निवारण गूढ़ गति अच्छे अखंडे तेज प्रचंडे खंड उदंड अलख मते जय जय होशी मैखा सुर मर्दन रम कवर्दन छत्र छिते आसुरी बिहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उदंडन रूप ते चंडा सुर चंडन मुंड बिहंडन धूम्र

अख ओख निवारण दुष्ट प्रजारण श्रेष्ठ उबारण शुद्ध मते फणियर फुंकारण बाघ पकारण सस प्रहारण साध मते सहती सन्नाहन अष्ट प्रवाहन बोल निपाहन तेज तुलन जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन भूमा काज पत

गुं गुरु घम कण सत जमंगण फणी अर्भुम कारण धरम तुझे अष्टाड प्रहासन सृष्ट निवासन दुष्ट प्रणासन चक्र गति केसरी प्रवाहे सुत सन्ना हे अगम था हे एक प्रति जय जय हो से मैं खासुर मर्दन आद कुमार अगात प्रति सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन अमृत मथे कावरु कुमारे अधम धारे नरक निवारे आद कथे

वह दयाल दाता दुरंत दुख दोग रहत जिह नेत नेत सब वेद कहत। कई उच नीच की नो बना सब वार पार जाको प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे। कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरज सेवंत कई पलट सूरज सिद्धा कराए ब्रह एक रूप द्वय कै लखाए। अंशिज तेज अनभय प्रकाश दाता दुरंत अद्वय अना सब रोग सोग ते रहत रूप अनभय अकाल अच्छा स्वरूप। करुणा निधान कामल कृपाल दुख दोख हरत दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजनाद जल थल प्रभाव सर्वत्र साथ। जय जात पात नहीं भेद भरम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय शत्रु मित्र दू एक सार अच्छा स्वरूप विचल पार। जानी न जाय जय रूप रेख कहे बास तास कहे कौन भे कहे नाम तास है कवन जात जय शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात। करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चयन नहीं रंग रूप जय खेद भेद नहीं कर्म काल।

भूख दह जल मैं थल मैं पल मैं कल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दयानित दोखन देखत है पर देत नहारे दाहत है दुख दोखन कौ दल दुजन के पल मैं दल डारे खंड अखंड प्रचंड बहारण पूरण प्रेम की प्रीत संभारे पार न पाए सके बदमा पद भेद कते व भेद उचारे रोज ही राज बिलोकत राजक रूप रुहान की रोज नटारे कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए देव देव खपे अहम बेव न बेव लख्यो भ्रम सियो फरमाए वेद पुराण कतेब कुरान हसेव थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पत सो किन श्री पद मापत पाए आदानंद का तद वेग सो भूत भविख भवान भय अंत विहीन नाथ महाबादागा दोगा छिद्र छह लोगन के करता हरता जल मै थल मै भरता प्रव है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद मापत ए है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है देह विहीन स्नेह सबोधन नेह विरक्त अगेह अच्छा है जान को दे दे जान को दे दे जमीन को दे दे जमान को दे है काहे को डोलत है तुमरी सुध सुंदर श्रीपद मापत ले है रोगंते और सोगंते जल जोगंते बहु भांत बचावे शत्रु अनेक चलावत धाव तऊ तन एक न लागन पावे राखत है अपनो कर दय कर पाप संभूहन भेटन पावे और की बात कहा कह दो सौ सो पेट ही के पट बीच बचावे जाच भुजंग सो दानव देव भेव तुम्हें सब ही कर ध्यावे भूमा काश पताल रसातल जाच भुजंग सब सिर न्यावे पाए सके नहीं पार प्रभा हूँ को नेत ही नेत वेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुर हार परे हर हाथ न आवे नारद से चतुरानंद से रमनारिक से सब हो मिल गायो वेद कतेव न वेद लखियो सब हार परे हर हाथ न आयो पाए सके नहीं पार उमापद सिद्ध सनात सनंदन ध्यायो ध्यान धरो तह को मन मै जह को अमितोज सब जग छायो वेद पुराण कतेव पुराण अभेद निरपान सब बजहारे भेद न पाए सके अन भेद को खेदत है अनछेद पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न साग न शोक न संग तिहारे आद नाद गाद बेख अद्वेग जप्यो तिन ही गुलतारे तीर्थ गोड किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे देश फिर कर भेष बोधन केसरे न मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे वो न्यास करे मुख कारे दीन दयाल काल भजे बिना अंत को अंत

अत्र के चलैया चित छत्र के धरैया छत्र धार्यो के छलैया महासतरण के साल है दान के देवैया महामान के बढ़ैया अवसान के देवैया है कटैया जम जाल है युद्ध के जितैया विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हूँ के मान है ज्ञान हूँ के ज्ञाता महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है पूर्वी न पार पावे हिंगुला हिमाल ध्यावे गोर कर देजे गुण गावे तेरे नाम है जोगी जोग साधे पौन साधना की तेग बांधे अरब के अरबी अराध तेरे नाम है फरा के फिरंगी माने कंधारी कुरेसी जाने पश्चिम के पश्चिमी पछाने निज काम है मरटा मंगेली तेरी मान सो तपस्या करे दृढ़ वह तिरंगी पहचाने धर्म धाम है बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है रोह के रुहेले मांग तेज के मंगेले वीर बंग सी बुदेले बाप पुंज को मलत है गोखा गुन गावे जिन मचीर के शीस ने अव देवते थे आए दुख देह के दलत है जिन्हें दोहे ध्यायो तिन्ह पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल से फलत है देव देव दान को सुरेश दानवान को महेश गंग धान को अभेश कहियत है रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे न दीन साध दीन कहियत है पाई न पार देंज पुंज में अपार सर्व विदा के उदार है अपार कहियत है हाथी की बुखार पल पाछे पहुचत दाहे चेटी की चिंघार पहले ही सुनियत है कहते इंद्र द्वार कहते ब्रह्मा मुख चार कहते कृष्णा अवतार कहते राम कहियत है कहते ससुरासी कहते सूरज प्रकाशी कहते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है कहते महादीन कहते व्यास से प्रवीण कहते कुमेर कुलीन कहते जच कहियत है करते हैं विचार पैना पूर्ण को पावे पार ताही ते अपार निराधार लहियत है पूरन अवतार निराधार है न पारावार पाई है न पार पे अपार के बखानी है यद्व अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूँ कराशी है अनासी के मानी है।

हो न जात जाके बाप हो न माए ताकि पूर्ण प्रभाग सो छटा के अनुमानिए तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र के जानिए तेज हूँ को तर है के राजसी को सार है के शुद्धता को घर है के सिद्धता की सार है कामना की खान है के साधना किसान है विरक्तता के बान है के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूँ को रूप है कुमत को प्रहार है दीनन को दाता है कनीमन को गारक है साधन को रचक है गुणन को पहार है सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अक्षय अविनाशी है काम को गुनिंदा है के खूबी को दिहंद है गनीमन गनिंदा है के तेज को प्रकाशी है काल हूँ के काल है के शत्रुन के साल है के मित्रन को भोगत है के वृद्धता के वासी है जोग हूँ को यंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के बुद्ध हूँ को घर है देवन को देव है निरंजन अभेव है देवन को देव है के सिद्धता को सर है जान को बचैया है ईमान को दिवैया है जमजाल को कटैया है के कामना को कर है तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्री है नर है विश्व को वरण है के आपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है पाई है न पार पारावार हूँ को पार जाको की जत विचार सो विचार को निवास है हिंगुला हिमालय गावे हा बसी हला पिधावे पूर्वी न पार पावे असत्य नाश है देवन को देव महादेव हूँ के देव है निरंजन अभेव न तद्व अविनाशी है अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के देवन के देव महादेव हूँ के देवनाथ भूम के हुजैया है मोहैया महाबाल के राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ को जोग है धरैया द्रुम छाल के कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसी छीरावध छाज कैसी छत्रानेर छपा कर कैसी छप कालिंद्री के कूल के हंसनी सी सिहारुम ही रसी हुसैन बाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सूरसी सुरंगाबाद नी के रही झूल के चंपासी चंदेरी गुड़ चांदनी सी चंदगढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसी पूर सी सासी सुरंगाबाद नी के सोहियत है हिमा से हिमालय हर हार सी हलपन हंस कैसी हाजीपुर देख मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगिर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंग धार बकांसी बिलंदवाद कीरत तिहार की उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासीस के दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गायत है भखरी गंधारी गोर गखरी गर्दे जाचारी पौन के आहरि तेरो नाम ध्यायत है पूरब पलाव काम रूप कमाओ सर्व ठौर मैं विराज जहाँ जहाँ जाइयत है पूर्ण प्रताप यंत्र मंत्र दया तापिनाथ कीर

कैठा कहूँ सिमट भयो शंकर इकैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठ

जे सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे। वाहिगुरु जी अरदास, एक ओंकार। वाहिगुरु जी की फतेह।

पाठपुस्तक संध्यावादं शिल्पजस्वगल समादं मोक्षजुड़वकुं सारं कृपा तिहार विचारं गालमाला तिलकलाटं दो दो ते वस्त्रक पाटं।